0: ए रणवीर सिंह, बहुत नाज है ना हिंदुस्तान को तुम्हारी सिख रेजिमेंट पर। अरे तुमने कड़े पहने तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी। देख देख तेरे सीने पर पांव रखकर कश्मीर की सरजमीन पर हम हमारा झंडा लहराएंगे।
1: ओए खुशिया, तू नहीं जानता सिक्का लो केस कच कड़ा कृपान संगा सिखों का निशान। दूर तेरा जाओगे नक्शे में पाकिस्तान।

0: y márquelo de nuevo.
1: ¿Doctor
2: Sabah? ¿O amigo? ¿Doctor Sabah? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo?
1: एक मिनट होल्ड करो, होल्ड करो जी डॉक्टर साहब।
3: हाँ जी,
1: चीमा साहब तुसी फिर कटो तो मैं तुहानू मिलाउणा देखदा जे मिलदा तो फिर आप कर देंगा।

करनी चंगा साडा था हो गया कंगा 200 विच पानी पै गया 200 विच पानी पै गया मैं इथे जोगा रह गया मैं इथे जोगा रह गया और पर ही सवारी कली कलैणी